यक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 जून 2026। समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शनिवार है,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों

0: ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में।

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण। अभी थोड़ी ही देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे चिंतन। आज का विषय रहेगा खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुनेंगे 6:45 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या 405। 7:30 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार चूरू। 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात होंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:00 हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।

9:10 पर आप सुनेंगे देशकान साहित्य सुगंध। ये कार्यक्रम होगा 9:15 पर। आज सुनेंगे आप वार्ता पातल और पिथल की विवेचना, वार्ताकार रामजीलाल कल्याणी। फेसबुक कमेंट पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिल से दिल तक 9:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार आप सुनेंगे 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। आज के कलाकार सुभाष चंद्र और साथी रहेंगे। हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:00। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। 2:00 हमारे दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज होगी। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने।

शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत शाम 6:10 पर होंगे। संस्कृत में समाचारों के लिए समय है शाम 6:20 का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से होंगे शाम 6:30 पर। तत्पश्चात कार्यक्रम जिले की चिट्ठी 6:40 पर होंगी।

राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे 7:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8:00। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी। तत्पश्चात 9:00 आप सुनेंगे News@9। 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत आप पुनः सुनेंगे। हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृति भारती आप सुनेंगे 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात्रि 10:00। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

आप सुन रहे हैं चिंतन। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के चिंतन में। मैं हूं आपके साथ रेडियो साथी अंकिता। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है खुशियां बांटने से बढ़ती है। श्रोताओं, हम सभी इस बात को जानते हैं, जब भी हम किसी चीज को बांटते हैं, वस्तु की बात करें, तो वो बांटने से कम ही होती है, लेकिन खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती है। जब भी हम अपने खुशी के पलों को किसी के साथ बांटते हैं, तो वह पता नहीं किस तरह से ऐसे लगता है कि दोगुनी हो गई है। एक अलग ही प्रकार का आनंद हम महसूस करते हैं। श्रोताओं, एक बेहद खूबसूरत और सच ये विचार है, जब हम अपनी खुशियां अपने पलों या सफलताओं को अपनों के साथ साझा करते हैं, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने से हमें खुद आत्मिक और मानसिक शांति मिलती है। खुशियां साझा करने से खुश रहने वाले हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो मानसिक तनाव को दूर करते हैं। अपनों के साथ साथ सुख दुख साझा करने से आत्मीय खुशी बढ़ती है, इससे संबंध गहरे होते हैं। हमारे परिवार, मित्र या अन्य कहीं पर भी हम जा रहे हैं, अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल रहा है जो हमें प्रिय लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे विचार इसके साथ मिलेंगे, हमें इसके साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। उसे अच्छी तरह परखने के बाद कि वे आपकी खुशियों से खुश होने वाला है, तो हमें उसके साथ अपनी खुशियां शेयर करनी चाहिए। अगर हम अपनी खुशियों को किसी खास अंदाज में अपनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हम सेलिब्रेट करके भी ये काम कर सकते हैं। और जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो किसी और को खुशियां देने के साथ साथ हमारी जो खुशी है वो भी डबल हो जाती है। इसीलिए हम अपने खास दिनों को सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई ऐसा खास दिन जो हमें बहुत पसंद हो, उसे हम हमेशा उसके सालाना रूप में या जब भी हमारा मन करे तब हम उसे खुशियों को बांटने के लिए मनाते हैं। और ऐसा करने के बाद काफी समय तक हम उनके पिक्चर्स देख देख के खुश होते रहते हैं। तो हम इस बात को ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो खुशी का पल था, अगर हम उसे बस उसी दिन मन में खुश होके छोड़ देते, अगर किसी का बर्थडे है या किसी के साथ कुछ बहुत खास हुआ है किसी दिन, और उसे याद किया गया है कि इस काम को इतने समय पहले हमने किया था और करने के बाद हमें इतनी खुशी हुई थी, तो जैसे ही वो पल निकलता है हम अपने कामों में लग जाते हैं और खुशियां वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने उसे दूसरों के साथ बांट लिया है, सेलिब्रेशन कर लिया है, तो फिर उनकी पिक्चर्स देख करके, उन यादों को याद करके हम अपनी खुशियों को बार बार याद करके पुनः खुशियों को डबल कर सकते हैं। किसी त्यौहार या विशेष अवसर की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम इन खुशियों को बांट सकते हैं। किस तरह से खुशी साझा करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, इसका निर्णय हमें स्वयं लेना होगा। हम खुश इस बात को जान सकते हैं कि हमें कहां, किस किस को और कब इन खुशियों को बांटना है, क्योंकि अगर इसका निर्णय कोई और करता है तो वो आपकी खुशियों को ठीक से नहीं समझ पाता है। इसलिए आप किस तरह से उसे साझा करना चाहते हैं, ये निर्णय आप ही का होना चाहिए। और ऐसा करने से हम आत्मविश्वास के साथ साथ अपनी खुशियों को डबल करते हैं। इसीलिए श्रोताओं, खुशियां बांटने से बढ़ती है, जितना हो सके अपनी खुशियों को बांटें।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है। समय 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सुनिए।

देखकर कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

अभी आप सुन रहे थे वंदना। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। समय 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

सभी श्रोताओं का स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं बाबू फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

गीत बहार की ये प्रस्तुति श्रोताओं ने सुनी मुकेश की आवाज में मधुमती फिल्म से। अगली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में और किशोर कुमार की आवाज में शर्मिली फिल्म से।

0: श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। समय 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या आज आप सुनेंगे 405। कलाकार है अनूप चरोटा, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 405।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सु अवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

आप सुन रहे थे श्री राम चरितमानस का। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

सभी श्रोताओं को रेडियो साथी अंकिता का नमस्कार। आज के कार्यक्रम नमस्कार चुरू में मैं बनी रहूंगी आपके साथ मीठे मीठे गीतों और चर्चाओं के साथ साथ योजनाओं की जानकारी के साथ। आप भी बने रहे कार्यक्रम नमस्कार चुरू में।

प्यारे से गीत की बात श्रोताओं, अब बात करते हैं हम अपने जीवन में कितने ही लोगों को उपहार देते हैं। गिफ्ट के तौर पर हम उन्हें अलग अलग प्रकार की चीजें देते हैं जिनसे वो अपने जीवन में उनको उपयोग कर सके। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि जीवन में सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जीवन में अगर हम किसी को अपना समय दे रहे हैं तो वो सबसे अच्छा उपहार है। लेकिन इसके अलावा अगर हम पुस्तकों के बारे में सोचें तो पुस्तकें सबसे बेहतरीन और सार्थक उपहारों में से हो सकती है, इसका हमें विचार करना चाहिए। केवल कागज और स्याही का संग्रह नहीं होती है पुस्तकें, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा और एक नई दुनिया का खजाना होती है। किताबें एक उत्तम उपहार क्यों है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती है और उन्हें जीवन के प्रति एक नया नजरिया प्रदान करती है। जीवन में हम चाहे जितना भी इधर उधर झांक ले, समझ ले, लेकिन किताबों से मिलने वाला जो ज्ञान है वो हम उसे पढ़ के आत्मसात करके अपने जीवन में एक नया रूप ला सकते हैं। अन्य भौतिक जो उपहार होते हैं उनकी तुलना में किताबें हमेशा उनके पास सुरक्षित रहेंगी और कभी पुरानी नहीं होती। साथ ही किताबों का ज्ञान अगर व्यक्ति लेता है तो व्यक्तिगत रूप से वो किसी और को इसका ज्ञान प्रदान कर सकता है, अपना जीवन सुखमय बनाने के साथ साथ दूसरों को भी इस ज्ञान से अवगत करा सकता है। किसी को उसकी पसंद की किताब देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी को उपहार दें, उसकी उम्र के अनुसार और उसकी पसंद के अनुसार उपहार में अगर किताब दी जाए तो वह जरूर उस किताब को पढ़ेगा। इसका विचार करते हुए हमें उपहार के लिए किताबों को खरीदना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनके अनुसार ज्ञानवर्धक और मनोरंजन के साथ दोनों बातों को मिलाते हुए किताबें खरीदनी चाहिए। अगर हम किसी और उम्र के व्यक्ति के लिए किताब खरीद रहे हैं तो उम्र का ध्यान रखते हुए साथ साथ हमें उसकी रुचि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हम उनकी रुचि का ध्यान रख करके किताबें देंगे तो वह उस किताब को पढ़कर उसका आनंद लेते हुए ज्ञान की प्राप्ति करेगा। जीवन में अन्य उपहार देने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसे उपहार जो हम एक बार काम में लेंगे और फिर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन किताब अगर हम किसी को देते हैं उपहार में तो वो ज्ञान जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के काम आता है। साथ ही साथ अपने आसपास के माहौल में अगर वो व्यक्तिगत तौर पर उस ज्ञान को बांटता है तो सभी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद

वह स्वयं भी उस ज्ञान का अर्जन करने के बाद किसी और को एक अनुभव ले लेने के बाद कि इस किताब में क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, अनुभव लेने के बाद वह दूसरों को वही किताब दे सकता है जब वह स्वयं उसे पढ़ लेता है उसके बाद। तो ये किताब एक प्रक्रिया के रूप में, एक लाइन के रूप में, पंक्ति के रूप में चलती चली जाती है, साथ ही साथ ज्ञान को बांटते हुए किसी प्रकार से घटती नहीं है, उसी रूप में सबको जैसे जो पढ़ रहा है उसे अपना ज्ञान प्रदान करती चली जाती है। इसीलिए श्रोताओं, जीवन में अगर हमें किसी को उपहार देना है तो विचार जरूर करें कि हम अगर उसकी पसंद की उम्र के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार किताब दें तो कैसा रहेगा।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू

क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के बाद श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। भारत सरकार की एक प्रमुख और निशुल्क कौशल प्रशिक्षण योजना है ये। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योग प्रासंगिक प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, ताकि उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसका प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ। इस योजना की नोडल जो मंत्रालय है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। इसके लिए पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक विशेष रूप से 15 से 45 वर्ष के स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट और बेरोजगार लोग होते हैं। कोर्स की अवधि 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष। अल्पकालीन प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। कोर्स की फीस पूरी तरह से निःशुल्क सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसके प्रमुख 3 घटक हैं: अल्पकालीन प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण की मान्यता, विशेष परियोजनाएं। बात करते हैं सबसे पहले अल्पकालीन प्रशिक्षण की। कॉलेज स्कूल छोड़ने वाले युवाओं या बेरोजगारों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना। पूर्व शिक्षण की मान्यता की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास पहले से कोई कौशल या कार्य अनुभव है उनका मूल्यांकन और प्रमाणन करना। विशेष परियोजना की बात करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र या सरकारी निकायों कॉरपोरेट के माध्यम से विशेष समूहों के प्रति प्रशिक्षण संचालन करना। इस योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV तकनीकी, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, हेल्थ केयर, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे लगभग 34 से अधिक क्षेत्रों में 200 से अधिक पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और परीक्षा पास करने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK में जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन या अपने नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र का पता लगाने के लिए आप PMKVY आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से

0: 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अंतराल के पास श्रोताओं कार्यक्रम में चलते चलते क्योंकि अब समय होने वाला है तो हम बात करते हैं खुद की। श्रोताओं हम अपने जीवन में सब कुछ ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का नहीं रखते। नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत आवश्यक है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है क्योंकि ये गंभीर बीमारियों का शुरुआती अवस्था में ही पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करती है। स्वस्थ महसूस करने पर भी नियमित जांच से संभावित स्वास्थ्य जोखिम को टाला जा सकता है और व्यक्ति दीर्घायु सुनिश्चित कर सकता है। कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां अक्सर शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं दिखाती। समय पर जांच से इनका इलाज आसान हो जाता है और व्यक्ति अपना जीवन लंबा कर सकता है। अगर हम अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच कराते हैं तो ये तनाव से मुक्ति देती है क्योंकि अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आई है तो मानसिक शांति मिलती है और बीमारियों का डर दूर रहता है। लंबी आयु के लिए छोटी बीमारियों के जल्दी पकड़ में आने और रोकथाम से भविष्य में होने वाले महंगे चिकित्सा उपचारों और अस्पतालों के खर्चों से भी बचा जा सकता है। अपनी जीवन शैली में सुधार बहुत जरूरी है। जांच के दौरान डॉक्टर आपके स्वास्थ्य, पारिवारिक इतिहास और जीवन शैली को देखकर उचित सलाह देता है। उसके पास बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए आपके बहुत सारे नुस्खे जो है वो दिए जाते हैं। 30 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सामान्यतः हर 1 से 3 साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए और 45 से 50 वर्ष के अधिक आयु के लोगों के लिए हर साल नियमित स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चोरू, ये आकाशवाणी का चोरू केंद्र है। समय 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात 8:15 पर। श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना

0: के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on six-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed three Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a two-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's seventh official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for the bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship, with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: After concluding his engagements in Nice, the Prime Minister will visit Slovak Republic from 14 to 16 June. Our correspondent, Smithy M. Paluruti from Bratislava, has filed this report.
4: The Slovak capital, Bratislava, is all set for the maiden visit of the Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion in 2024 and reached $1.8 billion last year. The visit will further reinforce India's commitment to strengthening cooperation with European Union member states. Midi M. Paluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
1: Defence Minister Rajnath Singh today congratulated Defence Research and Development Organisation DRDO for successfully conducting three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered defence against long-range ballistic missiles and anti-ship capability at medium range.
5: In a social media post, the minister said that these tests have put India in elite group of nations having ballistics missile defense capabilities to engage ballistic missiles up to intercontinental ballistic missile. Mr. Singh said that DRDO

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं सुर संगम। आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास को।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन के 1,491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6,000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और आवारा पशुओं से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। पाली जिले में आयोजित एक शिविर में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये शिविर नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
1: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने, 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी छूट दी है। 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3,00,000 से अधिक किसानों से 25,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे

0: बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारा के शाहबाद कस्बे में कल 2 घंटे तक बरसात हुई। नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है। वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने MSP पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं। समय 9:10

0: श्रोता भी सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है साहित्य सुगंध। आज आप सुनेंगे वार्ता पातल और पीतल की विवेचना। वार्ताकार है रामजीलाल कल्याणी।
1: पीतल पद्म श्री कन्हैयालाल जी सेठियारी अमर रचना है। श्री सेठिया जी राजस्थानीरा जूठा साहित्यकार हुआ है। आप चूरू जिले रे सुजानगढ़ निवासी हा। आप अपनी लेखनीसू मायड़ भाषा राजस्थानी री सांगोपांग सेवा करी।

आपरी लिखोड़ी राजस्थानी कविताओं माए पतल पिथल एक लोक लुभावन कविता है, जिनमें आप राजस्थानी भाषा रे लोक प्रचलित और लोक रंजक लोक लुभावन शब्दारों प्रयोग करो है। राजपूती आन बान और शान रो सांगोपांग चित्रण करो है। पतल और पिथल एक ऐतिहासिक आख्यान है, जिनमें पतल महाराणा प्रताप और पिथल पृथ्वीराज राठौड़ रो प्रतीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ रे महाराणा उदय सिंह जी रा कंवर हा और पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर रहा। इतिहासकार बतावे के महाराणा उदय सिंह जी री कंवरी किरण कंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने ब्याई ही। कुछ विद्वान यह बतावे कि किरण कुंवर महाराणा उदय सिंह जी रे बेटे शक्ति सिंह की कुमरी ही। इन मुजब पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप रा बहनोई या जमाई हुआ। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर रे दरबार माए नवरत्ना माए सु एक हा। अकबर रे दरबार माए पृथ्वीराज रो अच्छो मान मुर्तब हो। महाराणा प्रताप जीवन भर अकबर सु संघर्ष करो और मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं करी। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर रे दरबार माए हमेशा महाराणा प्रताप रे स्वाभिमान ने ऊंचो राख्यो और प्रताप की मान और बड़ाई की सराहना करी। एक बार प्रताप रे जीवन माए एक ईसो कष्टपूर्ण समय आयो कबे आप रे आजाद रवण सारू विचार सु डगमगागा। भोजन प्राप्त करने माए भी कठिनाई आगी। सेठिया जी पतल पिथल रचना माए यो उल्लेख करो है कि महाराणा प्रताप रे कुंवर अमर सिंह के हाथ सु एक बन बिलाव घास री रोटी भी खोज कर भागो। जद राणा रो कठोर यो भी दुखी होगो और बांके मन माए विचार आयो कि आपा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेवा और वह अकबर ने कागज मान नाख्यो कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करूँ हूँ। जब अकबर रे दरबार माए यो कागज पूछो तो अकबर ने यो विश्वास पुन्यो हो कि महाराणा प्रताप मेरे अधीन हो सके के। अकबर झट ही पृथ्वीराज राठौड़ ने बुलायो और बोलो कि हे पृथ्वीराज आज तू जिकर राणा की बड़ाई कर तो वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। यो देख राणा रे हाथ रो कागज है। जब पृथ्वीराज राणा रे हाथ री सेनानी देखी बांखी आंखिया माए पानी आ गयो। इया लागी जानू पगा रे नीचे सु धरती खिसक रही है। पर फिर पृथ्वीराज राठौड़ बात न सामी और बोलिया कि यो कागज झूठो है। राणा आपरी अधीनता स्वीकार नहीं कर सके। राणा री पगड़ी ऊंची है और राणा री आन अटूटी है। अगर आप हुक्म करो तो मैं राणा ने इन कागज री सच्चाई जानने खातर लिख कर पूछ लूं। अकबर बोलो हाँ हाँ इन कागज री सच्चाई जानी जावे। जब पृथ्वीराज राठौड़ राणा ने परवानो मांडे है कि मेरे आज समझ माए आ गई है कि सूरज बादल री ओठ माए छिप जावे लो, सिंह गादरा रे सागे सोवे लो, हाथी कुत्ते री जू जीवे लो, चातक पंछी धरती रो पानी पीवे लो। हे प्रताप मेरो इवड़ो बहुत दुखी है, मेरी तो मूछ की मरोड़ी चली गई, थे ई बात ने सोचो और जवाब दो। जब पृथ्वीराज रो कागज राणा के ने पूछो और राणा प्रताप भी न बांचो तो बारो स्वाभिमान पुनः जागो। वह पृथ्वीराज ने पछो जवाब दियो कि हे पृथ्वीराज बादल में सूरज ने उगने सु रोकने री ताकत नहीं है, सिंह की ताकत रोक ले वह कुख गादड़ी कने नहीं है और चातक की चूंत इसी नहीं है कि वो धरती रो पानी पीवे और कुत्ते की चूंत जीवे। इसी अथिरी बात कदे ही सुनी कोनी, थे थारी मुछा की मरोड़ कायम रखो, मैं अकबर सु लगातार लड़ूंगा। मेवाड़ दुश्मन की आंखिया में अंगारों से चमकेगो और रणभेरी की आवाज पर पग पग पर तलवार की खड़क सुनाई देवेगी। मैं राजपूतन रे घरा जन्म लियो है और राजपूती कर चुकाऊंगा, चाहे मेरी सिर कट जावे पर मेरी पगड़ी ने अकबर रे पगा में पड़ने नहीं दूंगा। जब राणा रो कागज पृथ्वीराज राठौड़ कने फूग्यो तो बाकी छाती धूनी चौड़ी होगी और अकबरी दुनिया सुनसान होगी। पातल पीथल रो यो आख्यान राजपूती आन स्वाभिमान और विचार ने ऊंचाई प्रदान करने वालों है। साथ ही राजस्थानी भाषा अपनी मायड़ भाषा रो मान बढ़ावनियो है। अपा अब या आशा करा हाँ कि राजस्थानी भाषा रो बड़प्पन
विद्वानारी समझ में आ रहे है। कोर्ट सु भी यो आदेश पारित होगो है कि राजस्थानी भाषा स्कूल में पढ़ाई जावे, टाबरा ने सिखाई जावे। राजस्थानी भाषा रो भविष्य चमचमा तो सो लागे है। अपा ने यह आस करनी चाहिए कि राजस्थानी भाषा ने इब जल्दी ही मान्यता मिलेगी। इब मैं आपने पातल और पीथल रचना ने पूरी गाकर सुनाऊंगा।

सुख दुखड़ो साथी जे तकड़ो सूती सी हूंक जगा जावे। पण आज भी लख तो देखूं हूं जद राज कुंवर ने रोटी ने तो छात्र धर्म ने भूलूं हूं भूलूं हिंदुआणी चोटी ने। महला में 56 भोग जका

पर वह आज रुले भूखा तिसिया हिंदुआणे सूरज राटा बर या सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आख्या में आंसू भर बोलो हूँ लिख स्यू अकबर ने पाती पण लिखूं कि आजद देख है आरावल ऊंचो ही ओलियां चितोड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सीलियां छियां हूं झुकूं किया है आन मने कुलरा के सरिया बानारी हूं बुझूं किया है शेष लपट आजादी रे परवानारी पण फेर अमर री।

वाच हुयो अकबर रो सपनो हो साचो पण नैन करो विश्वास नहीं जद बाँच बाँच न फिर बाँचो के आज हिमालय पिंगल भयो के आज हुयो सूरज शीतल के आज शेष रो सिर डोल्यो यूं सोच हुयो सम्राट विकल बस दूत इशारो पा भाजो पीथल ने तुरत बुलावण ने किरणारो पीथल आपू गयो

पकड़ यो देख हाथ रो कागज है तू देख्या कर सी किया अकड़ मर डूब चलू भर पानी में बस झूठा गाल बजाओ।

खिसक गई, आँख्या में आयो भर पानी, पण फेर कही तत्काल संभल, या बात सफाही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है, लो हुकम हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रे खातिर ले पूछ भलाही पीथल तू, या बात सही बोलो।

सुनी कोनी मेवाड़ धधक तो अंगारो आख्या में चम चम चम कैलो खड़कैरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़कैलो राखो थे मूछा मोड़ेड़ी लोहूरी नदी बहा दूला हूँ अथक लड़ूंगा अकबर सो उजड़ो मेवाड़ बसा दूला।

0: सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता पाथल और पिथल की विवेचना, वार्ताकार रहे रामजीलाल कल्याणी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, समय 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फेसबुक कमेंट पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।

सभी श्रोताओं को अंकिता का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम दिल से दिल तक में मैं आपसे बनी रहूंगी आपके फेसबुक कमेंट्स और प्यारे प्यारे गीतों के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद अब आपका कमेंट पढ़ते हैं। साथी है हमारे कमेंट भेजने वाले रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। बड़ी ही एक ऐसी बात इन्होंने लिखी है जो हम सबके साथ होती है, और हमेशा हम कुछ ऐसे जिनके जो इनके विचार हैं वैसा ही कुछ कर पाते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलते समय चलते चलते इंसान का कदम कभी कभी डगमगा जाता है। वो कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिसे वह भूल नहीं पाता, क्योंकि अक्सर जो व्यक्ति गलतियां नहीं करता बहुत सोच समझ के चलता है। अगर उसे कोई गलती हो जाए तो वो उसे भूल नहीं पाता, ये बिल्कुल ठीक बात है। गलती किसी से हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती किससे ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। मगर उस गलती को याद रखना, पछताना, ये सब बातें इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुख पहुंचाते हैं, मानसिक शक्ति को भंग कर देती है। दोस्तों, हमें चाहिए क्या कि हम अपने जीवन में अगर गलतियां हो गई हैं तो उनसे सीखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जो हमने गलती की है अब उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, आने वाले समय में उससे बचा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और हम सब अपने जीवन में इसे अनुभव करते हैं। कमेंट और लेंगे इस गीत के बाद।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान।

0: आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: श्रोताओं, अंतराल के बाद अब आपके कमेंटों की बारी है और कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हमें कमेंट भेजा है। विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी ये लिखते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, प्रेम, विश्वास, सम्मान, मानवता और करुणा जैसे मूल्य हमेशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। यही वे गुण हैं जो समाज को बेहतर बनाते हैं और इंसान को इंसान बनाए रखने में मदद करते हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम केवल आगे बढ़ने की नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने की भी कोशिश करें, दूसरों की भावनाओं को समझें, जरूरतमंदों की सहायता करें, प्रकृति का सम्मान करें और अपने रिश्तों को महत्व दें। जीवन की असली खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों, सच्चे रिश्तों, अच्छे विचारों और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में छिपी होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: अंतराल के बाद श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम दिल से दिल तक। श्रोताओं, आप कमेंट में अपनी पसंद का गीत लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। श्रोताओं, हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, इसमें आप अपने विचार भेजें। आपकी पसंद का गीत जो है वो अलग से कार्यक्रम जो ईमेल का होता है उसमें आप वहां पर अपने ईमेल में अपनी पसंद का गीत भेजें, लेकिन यहां आप अपने विचारों को लिखें। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो हमें कमेंट में फिल्म का नाम लिख के भेजते हैं, गाने के बोल लिख के भेजते हैं, स्वयं का परिचय देते हैं। उन कमेंट्स को हम शामिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपने उम्दा विचारों को हमारे फेसबुक कमेंट पर भेजें। चलते हैं आपके कमेंट की ओर। कमेंट है हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। ये कहते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं कि जब हम भीतर की ताकत को पहचान लेते हैं तब हम किसी ब्रह्मास्त्र के भरोसे नहीं रहते, या किसी ये जो आंतरिक ताकत है, आत्मविश्वास है, वो ब्रह्मास्त्र की ही तरह होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार का सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। स्वयं पर अनुशासन हमेशा आपको विजय दिलाएगा। स्वयं पर आप किस तरह से अनुशासित कर स्वयं को आगे बढ़ाते हैं, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, ये सारा आत्मविश्वास आपको हमेशा उस स्थिति में ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात लिखते हैं। कमेंट और पढ़ेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

श्रोताओं, अगर आप भी अपने उम्दा विचार कमेंट के तौर पर हमें भेजना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, तो हम आपके कमेंट को कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आपके उम्दा विचार जो सभी के काम आ सके, सबको आदर्श रूप में मिल सके। कार्यक्रम का अंतिम कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, साथी है हमारे हनुमानगढ़ से।

नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से हमेशा दूर रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। बहुत ही प्यारी बात है। ये था कार्यक्रम का अंतिम कमेंट, और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल से दिल तक। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से

गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर

तरा रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है।
1: मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
0: वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40% पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम

0: कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
1: क्या बताऊं?
0: यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है,
1: तुम परेशान मत हो पल्लू।
0: प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे, आखिर क्या कहें। मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो

अरविंद को भाई, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है, तुम भी ना। कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्माकर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी

0: लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है।
1: अच्छा,
0: मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा।
1: हाँ बताया था,
0: अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी।
1: क्या मंगाऊं मैं?
0: कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चल

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा

का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ, थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं। क्योंकि यही सच है, अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: शुरू दिन के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए अब कार्यक्रम विवरण भी जानिए। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, आज है महीने का दूसरा शनिवार। हम आज आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे दिन में 3 बजे से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर हैं 01562253644। इन नंबरों पर आप फोन करके अपनी पसंद का गीत साथ में अपनी बातचीत को दर्ज करवा सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कलाकार हैं सुभाष चंद्र और उनके साथी। दिन में 12 बजे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम होगा सुरबहार। महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। आज के कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगी मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो क्या करें। सकारात्मकता को दे अपने जीवन में स्थान और सही सोच से अपना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें।

दिन में 2:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी। आज युवा साथियों के लिए फरमाइशी कार्यक्रम होगा युवा पसंद। युववाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर। साथ ही पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता पर भी चर्चा होगी। किसान वाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे। चर्चा होगी किसान भाई कृषि मेलों से लाभ उठाएं और पशुपालन में लसनों का महत्व है।

शिलोंग आज शाम 7:30 पर और 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे राजस्थानी लोक संगीत। रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती। 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन की 11:05 हुए हैं। विजय प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इल्जाम फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में श्रोता सुन रहे थे इंतकाम फिल्म का गाना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। जब सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम जान।

0: अलका याग्निक के साथ मनहर उदास की आवाज को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम जानवर। ये फिल्म गीत इस समय सुन रही है श्रोता आकाशवाणी के चूरू केंद्र से चित्रपट संगीत कार्यक्रम के तहत कुंज बिहारी के साथ।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

लता मंगेशकर, एस पी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में श्रोता सुन रही थी हम आपकी हैं कौन फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का अगला गीत त्रिशूल फिल्म से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

श्रोता सुन रही थी बादल फिल्म का गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

पाकिज़ा फिल्म का एक गीत आप सुन रही थी लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए यशोदास की आवाज़, फिल्म का नाम साजन बिना सुहागन।

इम्तिहान फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़। इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम सुरबहार। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए तलत अजीज की आवाज़ में कुछ गजलें।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम सुरबहार। आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे तलत अजीज को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रिजब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं सुभाष चंद्र।

माटिकेश्वर कार्यक्रम में श्रोता आज सुन रहे थे सुभाष चंद्र और उनके साथियों को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन का एक बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 215-17वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी

0: या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है, वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा, साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों का स्वागत है आपके अपने और पसंदीदा प्रोग्राम महिला जगत में। और आज का महिला जगत लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा,
1: मैं कोमल राज पुरोहित। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: कोमल, हम बात करते हैं मौसम की। जो जैसा मौसम होता है उसके अनुसार हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, ये सब बातें जो होती है ये हमारे कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पे हम हमारी बहनों को अवगत कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और हमारी बहनें जो है वो उन सब चीज़ों को फॉलो भी करती हैं। और इतने दिनों से जो गर्मी का मौसम चल रहा था, या हम कहें कि बहुत बेहद जो गर्मी थी कोमल, उसने बहुत हमें परेशान भी कर रखा था ना। कुछ खाने का मन नहीं करता था, बस पानी पिए जाए, कुछ लिक्विड जो है ना वो हम लेते रहे, ऐसे मन करता था। और साथ ही साथ कोमल, हमें पता है आपका जो है कि जो हम दोनों के चेहरे पे जो शिकन सी है वो इसलिए है कि एक तो गर्मी, ऊपर से जैसे ही थोड़ा हल्का सा ऐसे लगे कि अब शाम होगी ठंडक आएगी, तो ठंडक तो आती नहीं थी,
1: साथ ही
0: क्या आता था बताइए,
1: आंधी आती है साथ में, जो हम सभी बहनों के लिए एक परेशानी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें यही चिंता रहती है कि अरे मौसम थोड़ा सा बदलाव आया है, इस मौसम में क्या आएगा, हमें यही सोच रहती थी कि क्या बारिश या आंधी। और हम सबके मन में एक ही चीज रहती है कि बारिश तो आए ना आए, आंधी जो है वो जरूर आएगी।
0: और होता भी यही है कि आंधी ही आती है, फिर दिमाग में ये चलता रहता है कि काश आंधी के साथ साथ थोड़ी सी अगर बारिश भी आ जाए तो ये मिट्टी जो है वो थोड़ी बैठ जाए, फिर सफाई भी करें तो नेक्स्ट डे तो कम से कम इतना हो कि मिट्टी गीली रहेगी तो उड़ेगी नहीं। लेकिन अभी शायद ईश्वर ने सुना नहीं, लेकिन कल वाली बारिश से हम कह सकते हैं कि मिट्टी जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी या जम गई है, गीली हो गई है। तो अगर एक दो दिन में अगर तेज हवाएं भी चलती है तो वो इतना तो हमें श्योर है कि मिट्टी नहीं ले जाएगी, यानी एक दो दिन महिलाएं जो है अच्छे से सांस ले सकती है ठंडी ठंडी हवा में, और अच्छी जो जिंदगी हम कहें जी सकती है। क्योंकि एक डर जो है ना मन में रहता है, और हर मौसम में ही रहता है, हर मौसम का हम मजा भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ये होता है कोमल कि ठंड के मौसम में हाथ पांव जो है वो जम से जाते हैं, तो काम नहीं होता। और सर्दी गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी हो तो वैसे, और आंधी आ जाए तो वैसे,
1: ऐसे में सफाई करते करते जो हमारे हाथ है वो वैसे सुन से हो जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो कमल ये भी है, देखिए कुछ बहनें हमारी ऐसी भी होती है जिनको डस्ट से एलर्जी होती है, जो इस मौसम में जो मिट्टी उड़ती है वो सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नाक के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, फिर कई बहनों को जो है खांसी है वो शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम कहते हैं हर मौसम में खुद का ख्याल रखिए, तो इस मौसम में हम आपको यही कहेंगे कि जब तेज आंधी आती है जो पार्टिकल्स उड़ते हैं, और आपको अगर एलर्जी है, एलर्जी नहीं भी है तो भी आप अपना ख्याल रखिए कि आप अपने मुंह के ऊपर सूती या मलमल का जो भी कपड़ा है वो लपेट के फिर सफाई करें, और जो भी आप सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, या अगर मेड आती है मेड से लगवा रहे हैं तो उससे कहिए बिल्कुल धीरे धीरे होले होले से लगाए, ताकि वो मिट्टी ज्यादा ऊपर ना उड़े, क्योंकि जैसे वो ऊपर उड़ेगी वो फिर से नीचे आएगी और फिर से जमना स्टार्ट हो जाएगी और सांस के साथ हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाएगी, और जो अस्थमेटिक होते हैं उनको तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, अपने घर परिवार को जिस तरीके से हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, उसी तरीके से हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जो शरीर के अंदर ऑर्गेन्स है उनको साफ रखना भी हमारा ही दायित्व बनता है, ताकि हम जितनी उम्र भी जिए एक स्वस्थ जीवन शैली जो है अपना के स्वस्थ जो है जीवन जी सके।

0: जी हाँ बहनों, अब हम बात करते हैं हमारी बहनों, जी हाँ बहनों, अब हम बात करते हैं अपने इस एज के बारे में जिसमें हम हैं अभी। जी हाँ बहनों, हम हैं अभी 30-35 के आसपास में या 40 के पास में, या इससे भी कुछ बड़ी उम्र की बहनें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उन सभी को बस आजकल एक ही चीज़ जो है वो मन में रहती है, वो यही है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो, और इसी के साथ हमारी जो एज है वो इतनी कम लगे जिससे कि हम जो है एकदम यंग दिखें, एकदम स्मार्टनेस जो है वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हो। और जब भी हम कुछ भी अच्छा सा पहनते हैं या फिर कुछ नया अपने अंदर ट्राई करते हैं, तो हम ये अपने अंदर फील भी करते हैं कि हमारी एज जो है वो अपनी एज से कम हो चुकी है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो यही है, लुक यंगर देन योर एज। जी हाँ, किस तरह से आप अपनी एज से जो है वो छोटा दिख सकते हैं। तो आज हम यही बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें अपनानी चाहिए, किस चीज़ों को अपनाते हुए हम अपनी एज को जो है वो कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कपड़ों के बारे में। कपड़े वो चीज़ है जिससे हमारे जो है वो एज में जो है वो बदलाव कर सकते हैं, हमारे शरीर की बनावट को अलग ढंग जो है वो दे सकते हैं। इसी के साथ में हमें कंफर्ट लेवल जब महसूस होता है, जब हम खुद जो है वो अपने अंदर सुरक्षित या फिर कंफर्ट लेवल महसूस करते हैं, तो हम अपने मन से भी जो है अपनी एज से कम हो जाते हैं।
1: बिल्कुल कोमल, हम जो भी पहनते हैं, भले ही फिर वो साड़ी हो या और कोई परिधान हो, कुछ भी जब हम पहनते हैं, कोट सेट है या जो भी सूट वगैरह है, जीन्स है, जो भी हम पहन रहे हैं, वो एक तो कंफर्ट होना चाहिए, एक हमें आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हम उसमें कैसे दिख रहे हैं। देखा देखी करके कि फला इंसान ने वो ड्रेस पहन रखी है, वो काफ़ी स्मार्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, और हम भी ट्राई कर ले। लेकिन हमें ये पता रहता है कि जब हम शीशे के सामने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कैसे लग रहे हैं। तो एक तो देखा देखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर की बनावट जो है, आपके शरीर की बनावट दूसरों के शरीर की बनावट बिल्कुल अलग होती है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की हाइट बहुत कम होती है। तो अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए हमें कपड़ों का चयन करना चाहिए कि जिसमें हमारा लुक जो है वो स्मार्ट लुक आए। अब वो भले ही अगर आपके घर में और कोई परिधान पहनने की इजाज़त नहीं है, आप अगर साड़ी भी पहन रहे हैं तो आप उसको भी एक स्टाइलिश लुक जो है वो दे सकती हैं। अब उसके साथ आपको क्या क्या जो है, आप ज्वेलरी किस तरीके की पहन रही हैं, आप हेयर स्टाइल कैसी रख रही हैं, तो ये सब जो है बहुत मैटर करता है। बस थोड़ा सा इसमें आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो इसमें आपकी सोशल मीडिया जो है वो बहुत हेल्प कर सकता है। उसमें आजकल हम देखते हैं कि पहले तो हम मान सकते हैं कि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो हम इतना इन चीज़ों को नहीं देख पाते थे, हमें नहीं पता लगता था कि ट्रेंडिंग में क्या है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सब कुछ पता लग जाता है। तो देखा देखी नहीं करनी है कि सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है तो हम भी वैसा ही ट्राई करें। आप जिस स्थान में रहते हैं, जिस घर परिवार में रहते हैं, जहाँ पे आपका आसपास का माहौल है, इन सब बातों को देखते हुए ही आप अपने आप को अपडेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों कोमल
0: जी, आपने एकदम सही कहा कि जो भी हमारा परिधान है उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छी है कि हम अपने आप को अपडेट रखें। अगर हम अपने आप को अपडेट रखेंगे, अपने वार्डरोब में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, तभी हम जो है अपनी एज को कुछ कम दिखा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है अपने मन को ये चीज़ बताने की कि हाँ, हमें जो है अपने आप को स्वस्थ रख के अपने आप को यंगर जो है वो महसूस कराना है। क्योंकि अगर हमारा मन जो है इस चीज़ को मान लेगा कि हाँ, हम तो अभी जो है सिर्फ इतने ही साल के हुए हैं, तभी जो है ये चीज़ें संभव है। लेकिन आजकल विनीता जी, हम देखते हैं कि इसके विपरीत होता है कि शरीर जो है वो हमारा साथ थोड़ा सा कम देता है। कुछ बीमारियां हमें इस तरह से घेर लेती हैं जिसके कारण हमारा मन जो है वो हार जाता है, और हम हमारी शारीरिक तकलीफ के कारण जो है ये महसूस करने लगती हैं कि अब तो हमारा बुढ़ापा जो है वो आ चुका है। तो इसी सोच को हमें दरकिनार करते हुए थोड़ा सा अपडेट रहना है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ हम पे पपती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसी के अनुसार सोशल मीडिया को देखते हुए आजकल आप अपने अंदर थोड़ा सा जो है वो चेंज कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप जो है वो अपने मेकअप की बात करें, तो इसमें भी अगर आप चेंज करते करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है आइस फेशियल या आइस डिप, जिसको हम कह सकते हैं। दिन की शुरुआत अगर बर्फ़ के ठंडे पानी से फेस, जो बर्फ़ की जो आपके आइस क्यूब्स होती हैं उसको आप पानी में डिप करके, अगर इससे आप अपना चेहरा जो है वो क्लीन करते हैं, तो इससे हमारे जो पोर्स हैं वो टाइट होंगे और चेहरे की जो फबीनेस है वो भी कम होती है, और इससे हमारे चेहरे को जो है इंस्टेंट फ्रेशनेस जो है वो मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सनस्क्रीन है, चाहे घर हो या बाहर हो, आपको ये ध्यान रखना है कि SPF वाला जो 50 सनस्क्रीन आता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये प्रीमेच्योर एजिंग से जो है वो हमें बचाता है, और टोनर्स आते हैं, सीरम आते हैं, इनका इस्तेमाल भी हमें अपने स्किन को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। और मेकअप भी हमें जो है जो यूज़ करते हैं हम, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ब्लश है, हाइलाइटर है, अगर हम इनको आसानी से लगाते हैं तो हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि पाउडर जो ब्लश आता है वो ना लगाएं। अगर आप हम वो लगाते हैं तो आप मानेंगे कि आपका जो क्रीम लगाना है जो आपके चेहरे पर है वो एक टाइम के बाद में दिखने जो है वो लग जाता है। इसी की तुलना में अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करती हैं तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद में जो क्रीम है, ब्लश है, वो आपके चेहरे पर जो है वो सेटल हो जाता है, और कोई बता भी नहीं सकता है कि आपने चेहरे पर कुछ लगाया है या नहीं लगाया है। आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करती है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि हाइलाइटर है, इसका इस्तेमाल भी आप जो है वो कर सकते हैं। लिपस्टिक है, उसको भी आप ग्लोसी लुक देने के लिए लाइट जो कलर है वो ले सकते हैं, ग्लोज ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार में आपको टचअप जो है वो करना होगा। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं आपके पर्स के अंदर जो है ये ग्लोस वगैरह चीज़ें जो रहनी चाहिए, तो समय समय पर आप इनको टचअप दें। आप इस तरह की चीज़ों को जब भी अपनाएंगे तो आपका जो एज है वो कहीं ना कहीं छुप जाएगी।
1: बिल्कुल कोमल, बहुत सही बात कही है कि आपके पर्स में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, मेकअप आपका किस तरीके का हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा ये भी नज़रिया होता है बहनों कि जब तक हमारा खान पान जो है वो हेल्दी नहीं होगा, हम गर्मी के मौसम में पानी नहीं पियेंगे या लिक्विड नहीं लेंगे, तो भी हमारी त्वचा जो है वो रुखी रुखी सी, बेजान सी रहेगी। फिर भले ही हम ऊपरी तौर पे कितनी भी लीपापोती करें तो वो नहीं दिखेगा। तो देखिए, ये मेकअप के साथ साथ ज़रूरी है कि आपका आहार जो है वो हेल्दी हो, खानपान आपका इस तरीके का हो। विटामिन सी जो होता है वो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बेहद लाभदायक होता है, तो विटामिन सी जो है वो आप ज़रूर लिया करें। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पीना है तो बहुत कम भी नहीं पीना है, जितनी आपको प्यास लगती है उतना तो पीना ही है। क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कोमल कि हमारी जो बहनें होती है जब काम में लग जाती है उन्हें प्यास भी लगती है तो वो पानी नहीं पीती है, तो उन्हें ये लगता है कि पहले काम कर लेते हैं पानी।
0: ये अक्सर सभी बहनों के साथ होता है।
1: बिल्कुल, तो उसका एक आइडिया जो है ना वो निकाल सकते हैं कि आप एक वाटर बोतल, अपनी किचन में ही रहता है उनका ज्यादा काम, तो एक आप बोतल में पानी भर के रखिए, बीच बीच में एक दो घूंट जो है वो आप लेती रहें। कहना यही होता है कि खड़े होके हमें पानी नहीं पीना क्योंकि घुटनों में, जॉइंट्स में दर्द हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन भी है बहनों कि आपको जो हम लगातार पीते हैं ना पानी, वो नहीं पीना है। आप एक दो सिप लीजिए, एक घूंट जो है वो भर लीजिए और उसे बहुत देर तक आप अपने मुंह में रखिए और धीरे धीरे धीरे धीरे है ना उस पानी को आप पी लीजिए। वो पानी जो है वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, और इस तरीके से पानी की मात्रा जो है, जो पानी की पूर्ति होनी चाहिए हमारे शरीर में, वो भी हो जाएगी। क्योंकि और फिर क्या होता है, बहुत सी महिलाओं को हमने ये भी देखा है कि जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, काम जब कंप्लीट करती हैं, किचन का काम हो या और कोई काम हो, पसीना इतना निकलता है गर्मी के मौसम में कि शरीर से पानी की कमी जो है वो होनी दिखने लग जाती है हमें। इसलिए पानी जो है भरपूर पीजिए। इसके लिए बस यही है कि टेक्निक आपको अपनानी होगी, वाटर बोतल आपको रखनी होगी, जहां मिले एक दो सिप आपको ले ही लेने हैं। इस तरीके से एक दो घूंट भी पी लेते हैं ना, तो वो भी जब सुबह से लेकर शाम तक हम पीते हैं तो दो बोतल भी पानी अगर हम पी लेते हैं ना तो वो भी काफी होता है, बनिस्पत इसके कोमल की हमने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। तो ये आदतें हैं ना, ये आपको हेल्दी रखती हैं, ये आदतें आप बिल्कुल अपनाइए और इस तरीके से आपके स्किन में जान रहेगी, बालों में जान रहेगी। और जैसा कि कोमल ने बताया कि वार्डरोब जो है उसमें भी आपके जो जितने भी आपकी ड्रेसेस हैं वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपको आपको स्मार्ट दिखना है, अपडेट रहना है, तो उसे भी समय समय पे आप चेंज करती रहें। और जो मेकअप आप यूज़ करती हैं वो करती रहिए, बस ये देखते रहें कि डेट और जो आपके स्किन टाइप है उसको देखते हुए ही जो भी आप मेकअप किट आपका है उसमें वो ही प्रोडक्ट आप यूज़ करें जो आपकी स्किन टाइप को
0: सूट करता हो। और मेकअप सिर्फ जो है वो बदलाव जो है, ब्यूटी जो है वो सिर्फ बाहरी नहीं होता है, अंदरूनी भी होता है। जैसे कि अभी विनीता जी ने कहा कि आपको खान पान का, आपको पीने का, इनका ध्यान रखना है। इसके साथ कुछ एक्सेसरीज जो है जैसे कि आपके नेल्स है, आपके फुटवेयर है, आपके बैग है, इनको भी आप समय समय पर अपडेट करिए सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आप इनको अपडेट करके रखेंगी, खुद को अपडेट रखेंगी, तो आप अपनी एज से जो है वो एकदम से छोटी दिखने लग जाएंगी।

बहनों, प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आपके साथ जुड़ते हैं और अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको अक्सर हम बहनों को करते हुए देखते हैं। जी हाँ, नीटिंग, कढ़ाई या बुनाई। अक्सर हम सर्दियों में जो है वो हमारी बहनों को अपना घर का काम करते हुए जो है, जैसे ही वो काम निपटाती हैं, हाथ में उनकी क्रोशियो या फिर जो है वो ये ऊन के धागे जो है वो लिपटे हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में भी हम अपनी कढ़ाई बुनाई जो है वो तागों की मदद से कर सकते हैं। और हम सबको इस बात की जानकर जो है वो हैरानी होगी कि निटिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बहुत सारे जो है वो फायदे हैं। अक्सर महिलाएं जो है विनीता, हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने शौक के लिए, अपनी पसंद के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए जो है वो इन सब चीज़ों को करती हैं। लेकिन आज हम अपनी बहनों को ये बताएंगे कि इसके फायदे भी जो है वो बहुत सारे हैं, और जब वो जानेंगी तो जानकर हैरान हो जाएंगी कि हमारी कढ़ाई बुनाई भी जो है वो हमें इतने फायदे पहुंचा सकती है। जी हाँ, ये सब चीजें जो है वो हमें बहुत ज्यादा एक्टिव रखती है, हमारे दिमाग को एक्टिव रखती है। और जब भी हम बुनाई करते हैं तब हमारा दिमाग जो है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि बुनाई करते वक्त हम जो है वो सीधा उल्टा फंदा जो है जब भी बुनती हैं, तो ये प्रक्रिया जब हम दोहराती हैं तो दोहराते वक्त हमारा दिमाग जो है वो काफी एक्टिव रहता है और रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, अब हमें और कुछ जो है वो सोचने को नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारे

0: सारी चीजें हैं, चाहे हम कुछ भी काम करें, हमारा दिमाग उनको सोचता रहता है, उन्हीं चीजों के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं वही सोच जो है वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है जो हमारे साथ पूरे दिन होता है। लेकिन बुनाई करते हैं तो हमें ये लगता है कि एक भी फंदा अगर हमने इधर से उधर किया तो हमारा डिजाइन जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारा दिमाग जो है वो एकदम एक्टिव रहता है, और हम जब इसको करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम से रिलैक्स होके वैसा ही महसूस करता है जैसा कि हमने योगा या मेडिटेशन जो करते हैं उसके दौरान हमारा दिमाग होता है।
1: बिल्कुल कोमल, बहुत सही बात कही है कि मेडिटेशन और योगा से जो लाभ हमें मिलता है, नीटिंग करने से भी वैसा ही लाभ हमें मिल सकता है। क्योंकि आपने कहा कि फंदे का अगर एक भी उतार चढ़ाव गलत हुआ तो पूरी बुनाई पे उसका असर आता है। ठीक इसी तरीके से बहनों, हमारे जो विचार चलते हैं उनमें जब तक पॉजिटिव विचार चलते हैं सही है, जहां पे थोड़े से विचार नेगेटिव हुए नहीं कि हमारे रिश्तों पे, हमारे समाज पे उसका असर होने लगता है, और सबसे ज्यादा असर होता है हम पे खुद पे। क्योंकि हम जब नकारात्मक सोच ले आते हैं तो वो हमारे ऊपर ही असर डालती है। और सही भी बात है कि जब हम कुछ बुनाई कढ़ाई करते हैं तो उसमें हमारा दिमाग हम बहुत एकदम आराम से लगाना चाहते हैं, उस वक्त हमारा दिमाग कोई और बातें सोचता ही नहीं है, जो कि हमारी आजकल की जो बहनें हैं ना वो ज्यादा ही करने लग गई है, ओवरथिंकिंग जिसे हम कहते हैं। और उसमें पता नहीं वो सोचते सोचते कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। और कहते हैं ना, दिमाग की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। आज यहाँ है आप और एक ही सेकंड में आप 7 समुद्र पार तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से विचारों का जो हम कहे उधेड़ बुन जो है विचारों की, वो चलती रहती है। तो विचारों की उधेड़ बुन में उलझने से अच्छा है धागों की उधेड़ बुन में उलझ जाइए। अगर आपको आती है नीटिंग करनी, कढ़ाई बुनाई आती है, तो आप उसमें उलझिए, उसमें अपने दिमाग को लगाइए। एक तो देखिए आपका दिमाग उसमें लगा रहेगा, दूसरा आपकी वो हॉबीज जो आप शादी से पहले नहीं कर पा रही थी फिर से उसको जीवंत कर सकती हैं, और तीसरा ये कोमल कि इससे देखिए, जैसा कि हमें स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि सोशल मीडिया हमें बहुत लाभ पहुंचा रहा है अगर सही तरीके से उसका हम उपयोग करते हैं। तो आप अपनी एक आईडी बनाइए और अपनी जो भी आप चीजें बना रही हैं उस पर डालिए। इस तरीके से लोगों को कई बार ये होता है कि जैसे हम भी देखते हैं कुछ आईडीज पे अपनी डालती हैं कुछ चीजें बना के, वो तो पसंद आती है तो हम उसे खरीदना भी चाहते हैं। तो अगर आप में ये कला है, कुछ आपको इस तरीके की चीजें बनानी आती है और आपके आसपास ऐसा माहौल नहीं है कि आप वहां पे उनको बेच सके, अपना वहां पे मार्केट कर सके, तो आप अपनी एक आईडी बनाइए सोशल मीडिया पे और वहां उनका आप प्रचार कर सकते हैं। आप हम कहें कि वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगा आपकी कला का, और एक इनकम ऑफ सोर्स जो है वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी कला को और ज्यादा निखारिए और आर्थिक रूप से अपने परिवार को और खुद को मजबूत बनाइए।
0: बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप इसको सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो प्रचार प्रसार कर सकती हैं, अपने अपने कमाई का साधन जो है वो बना सकते हैं। तो बहनों, ये जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आजकल के लोग जो है उनको होममेड जो चीजें हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं। होममेड जो चीजें हैं उनको वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय मशीनी जो चीजें होती हैं। वैसे जैसे कि कपड़ों के अंदर भी अगर हम कुछ अच्छी कारीगरी करते हैं, कुछ कढ़ाई करते हैं, तो वो भी कशीदाकारी है, तो वो लोगों को बहुत ही ज्यादा इसको पसंद किया जाता है और आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बहुत अच्छा हो सकता है। बहनों, हम देखते हैं कि जैसे कि अभी विनीता ने बताया हमें कि खाली दिमाग जो है हमारा वो बहुत सारी चीजों की उधेड़ बुन जो है वो करता रहता है, और आजकल जो हमारी बहनें हैं वो ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा करने लग गई हैं। वो कब होने लगती है? जब हमारे पास में समय जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, या फिर हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चलती है तब हमारे साथ ऐसा होता है। तो इससे अगर हमें बचना है, अगर हमें अपने समय को व्यवस्थित करना आ जाता है, तो ये ओवर थिंकिंग जो है इससे हम बच सकते हैं। और नीटिंग और सोशल मीडिया, ये इसको अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो इसी चीजों पर लगा हुआ रहेगा कि अब हमारे पास समय बचा है तो क्यों हम नई डिजाइन जो है वो सीख सकते हैं। जिन बहनों को ये चीजें नहीं भी आती हैं वो भी इनको ट्राई कर सकती हैं। तो हमें यही लगेगा कि आज मैं कौन सा नया डिजाइन जो है वो डालूं, और एक बार जब हम इसको सोचने या करने लग जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये हमारे अकेलेपन का जो है वो बहुत अच्छा साथी बन जाता है। जब भी हमें

कुछ भी करने का मन होता है तब हम एक नई डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकते हैं। इससे हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि क्योंकि बहुत सारी बहनें जो है वर्किंग वूमेन रहती हैं, घर का काम होता है, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ाव जो है वो कम कर पाती है। और ख़ास तौर पे जब हमारे हाथ में फ़ोन आ जाता है तो हमारा मन ही नहीं करता हम किसी के साथ बैठें, किसी के साथ जाएं, तो एकागीपन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम अपना काम जब करती हैं तो हम बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ती भी हैं, एक साथ बैठकर एक दूसरे की डिज़ाइन को साझा करेंगे तो हमारा एकागीपन जो है वो भी इससे दूर होगा। तो ज़रूरत है कि आप जो है नीटिंग को ये अपनाएं और एक्टिव रहें, अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स मोड पर डालें।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: कोमल, हम बात करें कि जीवन में हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती है, कुछ सपने होते हैं, कुछ अपेक्षाएं भी होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे मन के अनुसार सब कुछ होता चला जाए। और जब तक हमारी इच्छा पूरी होती रहती है, हम कहें कि हमारे मन का चाहा जब तक होता रहता है, हमें अंदरूनी खुशी जो है मिलती रहती है, हम संतुष्टि जो है वो महसूस करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कोमल कि जो हमारा जीवन होता है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार चले। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि मन चाहा परिणाम हमें नहीं मिलता है और ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं। तो हम बहनों से यही कहना चाहेंगे कि जो जीवन में जो उतार चढ़ाव आता रहता है उसे अपनाना सीखिए। जब हम ऊंचाई पे रहते हैं हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि कुछ परिणाम हमारे मन चाहे नहीं हो रहे हैं तो हम बेहद दुखी हो जाते हैं। तो वहां पे हम निराश होने की बजाय हमारा जो दृष्टिकोण है वो सही अपनाने की हमारी जो है बहुत जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। जब मन का होता है तब हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है और ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उदाहरण की अगर हम बात करें कोमल, तो जब कोई विद्यार्थी होता है वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है और परीक्षा में अच्छे अंक जो है वो भी मिलते हैं, बहुत खुशी होती है उसे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी पसंद की जब नौकरी मिल जाती है तो भी उसका लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाता है, तो भी वो खुद को सफल महसूस करता है। ऐसी सफलताएं जो होती है वो हमारे जीवन में उत्साह लाती है, सकारात्मकता लाती है। लेकिन इसका जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो भी होता है।
4: जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में केवल सफलता ही नाम नहीं होता है। अगर हमें एक सफल इंसान बनना है, अगर हमें जीवन में कुछ सीखना है तो हमें कठिनाइयों का सामना जो है वो करना ही चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि असफलताएं हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें आगे बढ़ना सिखाती है, हमें अपने भविष्य की चुनौतियों के लिए जो है वो तैयार करती हैं। और जब असफलताओं के बाद जब हमें सफलता मिलती है तो हमारे मन का जो उत्साह होता है वो बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। हम अक्सर ये देखते हैं आजकल जो कंपटीशन एग्जाम है इनमें बच्चे जो हैं वो बहुत ही मेहनत से तैयारी करते हैं, लेकिन जब एक ही बार में अगर हमारा चयन हो जाता है तो हमारा मन जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साह से भर जाता है। लेकिन कई बार होता है कि हमारा चयन जो है वो नहीं होता है और इससे हम हताश या निराश जो है वो हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें उन चीज़ों पर गौर करना है कि किन कारणों से जो है वो हमारा इसमें चयन जो है वो नहीं हो पाया है और क्या हमें कमी रह गई है, किस तरह से हमें अपने आप को दोबारा से जो है वो तैयार करना है। तो बहनों, असफलता जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में सिखाती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत होती है हमें अपनी सोच को सकारात्मक रूप देने की। अगर हम उसी चीज़ों से निराश होकर बैठ जाते हैं तो हम जीवन में कुछ भी जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। एक बार निराश होने के बाद में हम देखते हैं कि बच्चे जो है दोबारा उठने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें जो है उनका साथ देना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही, घर के जितने भी सदस्य हैं हम भी हैं, तो हमें अपने मन को ये समझाना है कि अगर हमारे मन का हो गया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो हमारे लिए आगे बहुत अच्छा जो है वो तैयार है, जरूरत है हमें अपने अंदर जो है सकारात्मक सोच को लाने की।
3: बिल्कुल कोमल, मन का ना होने पर सबसे पहले तो हमें यही स्वीकार करना होगा कि जीवन में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कुछ बातें परिस्थितियों, समय और भाग्य पर भी निर्भर करती है। यदि कोई कार्य हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। हो सकता है भविष्य में हमारे लिए उससे भी कोई
4: बेहतर
3: जो अवसर है वो प्रतीक्षा कर रहा हो। कई बार असफलता ही सफलता का मार्ग जो है वो प्रशस्त करती है, और हमने देखा है कोमल की इतिहास में बहुत से ऐसे महान वैज्ञानिक या बहुत से महान व्यक्ति जो है वो हुए हैं जिन्होंने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेते तो वो महानता की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। यदि वे केवल निराश होकर बैठ जाते तो कभी सफलता प्राप्त ही नहीं कर पाते। इसलिए बहनों, जब मन का ना हो तो हमें थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि कहाँ क्या कमी रह गई थी और फिर से हमें क्या करना है ताकि हम आगे जाके सफल हो सके। हमें हमारी कमियों को पहचानना होगा और एक नए उत्साह के साथ हमें जो है प्रयास करना होगा।

0: मीडिया का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को जो है वो बेहतर बना सकती हैं।
1: बिल्कुल, और आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा वो भी आप जरूर हमें लिख भेजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। मैं विनीता शर्मा,
0: मैं कोमल राजपुरोहित, नमस्कार।

0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh has urged the newly commissioned Indian Air Force officers to adapt to the evolving warfare technologies, including drones, satellites and robotics, in the changing security environment. He was reviewing the combined graduation parade of the 217th course at the Air Force Academy in Dundigal, Hyderabad today. Addressing the graduating officers, Mr. Singh emphasised that modern warfare has undergone significant changes and officers must continuously update themselves with emerging war systems and strategies.
1: Radar, satellites, drones.
2: Many systems such as radars, satellites, drones, sensors and robotics are deployed in today's warfare, in which neither the fighter is known nor their machinery and equipment. And today the definition of warfare has changed to a great extent. I believe that in your training programs and exercises, you have been well prepared to face uncertainty and unexpected challenges.
0: The Defence Minister also commissioned the first batch of women cadets trained at the National Defence Academy who had joined the Air Force Academy for branch-specific training after passing out from the NDA last year. The ceremony also featured aerial displays by the Sukhoi 30 MKI, the Sarang Helicopter Display Team and the Surya Kiran Aerobatic Team. Senior officials from various wings of the Defence Forces attended the event. India has lodged a strong protest to the United States over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf that killed three Indian sailors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and said that such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. External Affairs Ministry today said reports of death of Indian sailors in vessel Liaki Freedom are incorrect. The ministry said it has spoken to the master of the vessel Liaki Freedom, which has confirmed that all crew members are safe. The fact-check unit of MEA has urged people to stay alert against such false and baseless claims and posts on social media. The Enforcement Directorate, or ED, today conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Niti Aayog held a meeting with the German delegation aimed at advancing the Indian-Germany Development Partnership in New Delhi. The India-Germany Development Partnership highlighted the complementarity between Germany's technical expertise and development finance capabilities and India's policy ambition and institutional scale. According to the Niti Aayog, the discussions covered key areas of cooperation, including India's net zero transition, renewable energy, circular economy, agricultural transformation, water resource management and others. The government's flagship initiative, Beti Bachao, Beti Padhao, has emerged as a nationwide movement promoting behavioral change and empowering the girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
5: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
4: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
6: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
8: इन एन एरा ऑफ rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
7: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
1: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
3: समारोह में सुखोई 30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में तीन भारतीय

0: ये नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। दिन के 2:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए अगला गीत फिल्म अभिमान से, और संगीत के लिए आवाज लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के चूरू केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। राजा भैया का ये गीत आप सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

आप सुन रही थी लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वीकार किया मैंने फिल्म का गाना। कार्यक्रम जारी है तराने नए पुराने, एक और गीत।

अमित कुमार सपना मुखर्जी की आवाज को आप सुन रहे थे फिल्म त्रिदेव में। और श्रोताओं, अब सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना आपके लिए अब से कुछ ही मिनट बाद यानी 3 बजे से हम आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड करेंगे कार्यक्रम हेलो चूरू के लिए। हमारे फोन नंबर हैं 01562253644, 01562253644, 01562253644। फोन करने का समय अभी दिन में 3 बजे से 3:30 तक। तब तक आप सुनिए लता जी की आवाज में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना।

शुदा भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से प्रसारण कार्यक्रम युववाणी। और आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी हरीश मोहन,
1: और साथ में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कोमल दहिया। युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। और जैसा कि आप सभी साथी जानते ही हैं कि आज है शनिवार, और शनिवार के दिन जो है युववाणी में खास और स्पेशल सेगमेंट आपके लिए रहता है, वह रहता है आपकी पसंद। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशल सेगमेंट जो है, इसके अंतर्गत हम आपके द्वारा भेजे गए जो ईमेल्स होते हैं उन्हीं को जो है स्टूडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर रूबरू करवाते हैं। तो अभी जो गीत आप सुन पा रहे हैं अपने रेडियो सेट पर, ये जो गीत है ये पसंद किया है भंवर सिंह जी ने।
1: जी बिल्कुल, युवा पसंद खास सेगमेंट में ये गाना आप सुन रहे हैं।

0: बरसात फिल्म से इस गाने की फरमाइश हमें भेजी है भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा हमीरी कला झुंझुनू से। साथ ही महेश जानू जो हमें लिखते हैं बहादुरवास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया जो हमें लिखते हैं चिड़ावा झुंझुनू से, साथ ही बलजीत कांटीवाल बिदासर झुंझुनू से, राजा नंदवानी रजत रोहित केशव मुकुल मनीष सुमित साक्षी और किरण नंदवानी नई सड़क चूरू से, जगदीश मंडल अभिषेक मंडल कुदड़ी बाजार चूरू से, राकेश कुमार दूधवा मिठा चूरू, अरविंद खारड़िया जो हमें लिखते हैं लादड़िया चूरू से, साथ ही निशांत फुंडे ओम प्रकाश फुंडे मानसी चेतन गोंदिया जो हमें लिखते हैं महाराष्ट्र से।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, और अलका याग्निक और कुमार सानू की प्यारी सी आवाज में अभी ये गीत आप सुन पा रहे थे। और इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है वर्डिंग खेड़ा से, हमें लिखने वाले हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम तुम।
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: दोस्तों, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की प्यारी सी आवाज़ में अभी ये गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन पा रहे थे, और इस गीत को जो है बॉबी फिल्म से लिया गया है। इस गीत की फरमाइश हमें हमारे नियमित श्रोता साथी ने भेजी है, जो कि हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, और यह हमें लिखते हैं शादुल सैर जिला श्री गंगानगर से।
1: जी, और इसी गाने की फरमाइश हमें करते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। दोस्तों, ऐसे ही प्यारे प्यारे नगमे जो है वो आप हमारे प्रोग्राम में आपके खास सेगमेंट युवा पसंद में सुनते रहिए, और बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम युवाणी में।

0: दोस्तों, फिल्म कयामत से अभी हम गाना सुन रहे थे और इस गाने की जो आवाज़ दी है वो है अभिजीत, और इस गाने की जो फरमाइश है वो हमारे श्रोता साथी करते हैं सुभाष चंद्र, जो हमें लिखते हैं चूना राम की ढाणी तारानगर से।
1: जी दोस्तों, इसी गीत की जो है फरमाइश हमें इंदिरा विहार दिल्ली से भी मिली है। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं बेबी अंसारी, निशा, परवीन और डब्लू अंसारी। दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन जो है नगमे आप ओनली ऑन 100.7 एफएम पर सुन सकते हैं। बस आपको करना होगा एक छोटा सा काम, आप जो है हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com। इसके ऊपर जो है आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है ईमेल हमें भेज सकते हैं, जिसको कि हम अगले आने वाले शनिवार के स्पेशल सेगमेंट युवा पसंद में शामिल कर पाएंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं इस प्यारे से गाने की ओर।

0: जी दोस्तों, मुकेश की आवाज़ में ये बेहतरीन गाना जो है वो अभी आप अपने रेडियो सेट पर सुन पा रहे थे, जिसको कि उपासना फिल्म से लिया गया है। और इस गीत की जो है फरमाइश हमें मिली है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू।
1: जी दोस्तों, और साथ ही इसी गाने की फरमाइश हमें पंजाब गांव नथाना से करते हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। आप सभी का प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए शुक्रिया, और बने रहिए हमारे साथ आपकी पसंद युवा पसंद सेगमेंट में।

0: दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी हम गाना सुन रहे थे फिल्म चिराग से। इस गाने की जो फरमाइश है वो हमारे श्रोता साथी करते हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, जो हमें लिखते हैं जलालाबाद वेस्ट से।
1: जी दोस्तों, अगला ईमेल इसी गीत के लिए हमें मिला है नाभा जिला पटियाला पंजाब से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं सोमदत्त, कौरव, ज्योति रानी, गुरमंत और कौर मनु। जी दोस्तों, आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन 100.7 FM पर और आनंद लेते रहिए इन प्यारे प्यारे नगमों का।

0: तो दोस्तों सिंदूर फिल्म से लिया गया गीत जो है वो अभी आप अपने रेडियो सेट पर सुन पा रहे थे। आवाज़ थी कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की, और इस गीत को जो है हमें पसंद करके भेजा है दादरी गेट भिवानी से लिखने वाले श्रोता साथी हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा
1: जी। और इसी गाने की फरमाइश जब हमें करते हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। आप सभी का प्रोग्राम में जो ईमेल करते हैं आप उसके लिए शुक्रिया। और आप जो है प्रोग्राम में ईमेल का समय जो है वो ध्यान रखिए, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है। और आपने पसंद का आप अगर गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com। बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम युववाणी में।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज

0: जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जहाँ लाखों वहाँ तो एक खुदा होगा, आदम भी आदम है, किस बात में कम है, इसको बनाया क्यों खुदा को भी यही गम है, अपने किए पर आप

अपने अदा से जी, जब तक है दम बाकी तू आप ही पैमाना बन और आप ही साकी। जिंदा वो दुनिया में रहा, दुनिया को जो ठुकर

0: जी दोस्तों, संजोग फिल्म से अभी ये गीत आप सुन पा रहे थे मोहम्मद रफ़ी की प्यारी सी आवाज़ में। और इस गीत को हमें पसंद करके भेजा है उदयपुर राजस्थान से लिखने वाले श्रोता साथी हैं दिलीप पाहुजा, अशोक एन लोहार, उदयलाल जी, मुकेश जी और अमृत जी सेन
1: जी। और साथ ही छत्तीसगढ़ से हमें श्रोता साथी लिखते हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा। आप सभी का प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM पर।

0: दोस्तों ये बेहतरीन सा नगमा अभी आप सुन पा रहे थे अपने रेडियो सेट पर, आवाज़ थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। इस गीत को लिया गया है अखियों से गोली मारे फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे नियमित श्रोता साथी ने, जो कि हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, सचिन चौहान रामसरा वाले और समस्त सोनगरा परिवार। ये हमें लिखते हैं ग्राम पंचायत सिरसिला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से।
1: जी, और साथ ही हमें नेपा नगर मध्य प्रदेश से लिखते हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति,

0: दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी के स्पेशल सेगमेंट युवा पसंद में जो है फरमाइशी गीतों का सिलसिला निरंतर जारी है। और अब आपको लिए चलते हैं अगले ईमेल की ओर। अभी ये जो प्यारा सा गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन पा रहे थे, ये लता मंगेशकर और मुकेश की प्यारी सी आवाज में आपने सुना, और इस गीत को जो है अनजाना फिल्म से लिया गया है। इस गीत की फरमाइश जो है वो हमें लिख भेजी है गाँव फ्रांसी हिसार से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी
1: जी। और साथ में इसी गाने की फरमाइश हमें करते हैं महाराष्ट्र से अनिल बुरांडी, उषा, अनुश्री, धनश्री और बल्लार साहब जो हमें लिखते हैं सूरज, प्राची, एकलव्य। आप सभी का प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए शुक्रिया।

0: एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पोडवाल, कुमार सानू और पंकज की प्यारी सी आवाज में अभी ये गीत आपने सुना। इस गीत को फिल्म साजन से लिया गया है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की ओर से।
1: जी और साथ ही हरियाणा से इस गाने की जो फरमाइश है वो हमें लिखते हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत राहुल, गुरशब सिंह राहुल।
0: दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन गीत जो है आप सुन सकते हैं अपने रेडियो सेट पर अपने नाम के साथ। आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com।

0: दोस्तों, फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में जो है अभी आपने गीत सुना, मिस्टर लटवर लाल फिल्म से इस गीत को लिया गया है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन पा रहे थे। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार
1: जी। और साथ ही रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमें लिखते हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ युवा पसंद में।

0: जी दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी के स्पेशल सेगमेंट युवा पसंद में अभी जो ये गीत आपने सुना, ये फिल्म जावा से लिया गया है और आवाज़ थी किशोर कुमार सपना मुखर्जी की। इस गीत को जो है हमें लिखकर भेजा है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने, और ये हमें लिखते हैं मेरठ कैंट से। आप सभी का जो है कार्यक्रम में ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी दोस्तों, ये तो था आज का हमारा खास सेगमेंट युवा पसंद, जिसमें आपके द्वारा ईमेल भेजे गए, जिसमें आपकी पसंद के गाने जो है वो हमने अपने रेडियो सेट के जरिए आपसे सुनाए। और अगली बार फिर से शनिवार को जो है आपके खास सेगमेंट युवा पसंद में आपके पसंद के ही गाने सुनाएंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com।
0: जी दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए आपके रेडियो दोस्त हरीश मोहन को,
1: कोमल दैया को
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनकी संक्षिप्त जानकारी।

शाम 6 बजे श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। ये समाचार प्रसारण श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। शाम 6:10 पर सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचारों का प्रसारण श्रोता सुनेंगे शाम 6:20 पर। छह बजकर 30 मिनट पर सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार श्रोता सुनेंगे शाम 6:45 पर। ये समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर अजमेर से प्रसारित करेंगे।

किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7 बजे। कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन, राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे लुप्त रहिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलिस्ता का। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि 8:45 पर। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9 का प्रसारण। ये समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। नौ बजकर 30 मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम संस्कृति भारती का। 10 बजे श्रोता सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे रात्रि 11:05 पर। ये चारों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

0: 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देशभर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the two European countries. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight. Mr. Modi will hold bilateral talks with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will jointly inaugurate the Bharat Innovates event. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit to France will be on boosting economic as well as cultural linkages between the two countries. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
3: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
4: There is a core belief that key partnerships, for instance with France we have now a special global strategic partnership, they have to be driven

कार्यक्रम के आखिर में श्रोता सुन रहे थे सरफरोश फिल्म में रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम को। गीत लिखा था इसरार अंसारी ने, संगीतकार जतिन ललित। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अंशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्डस्य देहरादूनस्थितायां भारतीय सैन्य अकादम्यां अष्टपञ्चाशदधिकैकशततमं दीक्षान्त सञ्चलनम् अतीव वैभवेन आयोजितम्। भारतीय सेनायाः शौर्य परम्परायाम् अद्य 81,400 नूतनाः युवाधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। अत्रावसरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः समीक्षा अधिकारित्वेन अस्य भव्य सञ्चलनस्य निरीक्षणम् अकरोत्। अयमुत्सवः छात्र सैनिकानां कठोर सैन्य प्रशिक्षणस्य सफलतापूर्वकं समापनस्य प्रतीकमासीत्। दीक्षांत समारोहे युवाधिकारिणः अनुकरणीय अनुशासनं निष्ठां सैन्य भावनां च प्रदर्श्य अतीव सुस्पष्टं सञ्चलनं कृतवन्तः। अकादम्याः इतिहासे महिला छात्र सैनिकानां दीक्षांत समारोहं विशिष्ट कीर्तिमानत्वेन वर्णयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् इदं देशे महिला नेतृत्व युतस्य विकासस्य दिशि प्रेरणास्पदमस्ति।
1: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: श्रीमती मुर्मुः युवाधिकारिणः प्रबोधितवती यत् ते जीवने निरन्तरं शिक्षार्थिनः भवेयुः, साहसिक निर्णयान् स्वीकुर्युः, सहैव सुरक्षा समाह्वानानि सम्मुखीकुर्वन्तः नैतिक नेतृत्वस्य प्रदर्शनं कुर्युः।
1: In an era of rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders. As army officers, you will be responsible for leading, guiding and caring for the soldiers.
0: रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य नूतन नियुक्तेभ्यः भारतीय वायुसेनायाः अधिकारिभ्यः प्रबोधितं यत् परिवर्तिते सुरक्षावातावरणे तैः ड्रोन विमानानाम् उपग्रहाणां रोबोटिक सदृशाणां युद्धप्रविधीनां प्रयोगो विधेयः। सः अद्य हैदराबाद नगरस्य डुण्डिगल स्थितायां वायुसेना अकादम्यां 17,200 संयुक्त दीक्षांत सञ्चलनस्य निरीक्षणं कुर्वन्नासीत्। तेनोदीरितं यत् आधुनिक युद्ध पद्धतौ बहूनि परिवर्तनानि जातानि, अतः अधिकारिभिः नवीन युद्ध प्रणालिभिः रणनीतिभिश्च सह निरन्तरं स्वज्ञानं परिष्करणीयम्। अत्रावसरे रक्षामन्त्रिणा राष्ट्रिय रक्षा अकादम्यां प्रशिक्षिताः महिला छात्र सैनिकानां प्रथम गणः अपि वायुसेनायाम् औपचारिक रूपेण नियुक्तः। एताः महिलाः गतवर्षे एनडीए इत्यतः उत्तीर्णाः भूत्वा शाखा विशिष्ट प्रशिक्षणार्थं वायुसेना अकादम्यां प्रविष्टवत्यः। भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडा धर्मशालायां प्रवर्तते। आदौ पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अन्तिमवार्तालेखनसमयं यावत् अफगानिस्तानेन चतुक्षेपचक्रेषु द्वयोः क्रीडकयोः हानौ 24 धावनांकाः रचिताः। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं।

0: पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइट्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ, नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहां प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपये सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रुपये से अधिक।

0: हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले ढाई वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
1: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
0: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे। इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
2: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य

अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल, महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त, 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनकी उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर

0: प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी रिपासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिला हमारी अगुवाई में विकास रे दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माए साफ कोई और नीतियां माए आगे री सोचू देश बरकतरा गेला माथा चाल रियो है। और प्रदेश माए कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। पारा माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है जो महिलाओं री अगुवाई माए विकास री दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट आखिरी पग पार कर फौजी अहलकार बनवारो गौरव हासिल कीनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौरों सेवा दे रहा है। केंद्र सरकार माने 30 जून नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस अकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वे ऑपरेशनल रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वे दिल्ली एरिया रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा और दक्षिण पश्चिम कमानी संभाली। असम रा जोरहाट माए आज समारे भारतीय वायुसेना रो एक जहाज AN-32 हादसा रो शिकार फेंक्यो। इन कारण 5 जवान शहीद फेंक्या। वायुसेना कन्यू करी जिया सोशल मीडिया पोस्ट रे मुजब हादसा रे कारण स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम री मौत वे की। हादसा री ठौर सर्वाती जांच सागे जरूरी कार्रवाई करी जा रही है। ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखी जिया सम्मेलन माए बीजां री प्रणालियां रे बारा माए ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइट्स इन सीड सिस्टम बनावन री मंजूरी दी री जी है। भारत री सदारत माए भी आई सम्मेलन माए ब्रिक्स रा सदस्य देश कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी सारू एक्सलेंस सेंटर बनावन रोई फैसलो कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो के देश रा 87% किसान नाना और सीमांत है जाने मजबूत बना रही देश रे खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है।
2: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माए बदलाव रीठा करण सारू बनाई चिया आयोग ने सरहदी जिला माए आबादी रा बदलाव री जानकारी करण बाबत कहो है। वे आज इंबारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगरां और औद्योगिक शहरां रो दौरो कर हालात रो जायजो लेवन।

0: संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने साखा री कटाई अरवाने भिड़ी करण का काम माए सावचेती रखन सारू कहो है। 21 जून ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आखी दुनिया माए तैयारियां चाल रही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशा माए भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र माए लोगों ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला माए प्रदेश माए कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इन बीच अहमदाबाद माए भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप माए सोनारा दो तमगा जीतन वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
1: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर फौजी स्टेशन माए शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए फौज और सिविल सोसाइटी बीचे मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ली राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरू ओ दौरो खास मान्यो जा रियो है। इरा पहला दौर माए काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर माए वे काली स्लोवाकिया सारू रवाना भे जावेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वे फ्रांस रा एवियन माए 16 और 17 जून ने भेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन माए शामिल भेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस माए विवाटेक सम्मेलन माए शिरकत करेला। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड माए पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री NDA सरकार री नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश माए कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 107 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं इस समय शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
1: अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज के जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
5: आस लगाया मुरुधरा देख रही दिन रात, भागी आतु बादली आई रुत बरसात। कार्यक्रम किसान वाणी सुनना रहे सगले भाई बहना ने, टाबरा ने, बड़े बुजुर्गा ने, भाई अयुब खान गौड़
6: और मोहन भाई का निसुन
5: मोकला मोकला राम राम। मोहन भाई राम राम
6: राम राम।
5: मोहन भाई आथन को बखत एर आथन के बखत जत चौपाल जचे तो दूर दराज गांव में बैठे अपना हितालू उड़ीक करेगा आज की किसान वाणी के मायने कुण कुण सी बात हो सी, कुण कुण सा गीत हो सी और बात भी हो सी तो सरकार की किसाना के प्रति पशुपालका के प्रति समय समय के ऊपर देखो कृषि मेला भी लगा हुआ है, कृषि अभियान चला कि उन्नत बीज बिजाई ए देखी और किसाना के सागे है जी की खड़ी है।
6: बिल्कुल अयूब भाई, देखो सीखने की कोई उम्र को नहीं हो, आदमी देखो जिंदगी में रहना है, कुछ ना कुछ नई चीजा सीख तो रहे कठिन कठिन देख के। भाई पहली भी खेती बाड़ी हुआ करता घना ही अनुभव ही है, पर नित नया जगह नवाचार होने लाग रहे है, बांस से भी सीखना चाहिए। हर चीज वापस सीखता रहो, चौपाल में आपा बैठा लगातार आपा ने कितनी साल होगी बैठता बात करता, फिर भी देखो नई नई बातें निकल के आओ, बीच में नई नई चीजा सीखा, जो नवाचार हो रही है वो सीखने लाग रहा। जी अपना किसान भाई है जगह कृषि शिविरा की थे बात करिए, बार के मेला लागे कृषि का शिविर लागे जगह कृषि विभाग द्वारा लगाया जा, कदे पंचायत स्तर पर, कदे कोई गांव में, कदे तहसील लेवल पर जब लगाया जा तो किसान भाई ने देखो ज्यादा से ज्यादा इन भागीदारी निभानी चाहिए और आनो चाहिए, क्योंकि बैठे जगह विषय विशेषज्ञ बैठे खेती बाड़ी का मायने वाई खूब पढ़ाई कर रेडी हुआ जगह कृषि का विश्वविद्यालय हो जगह में खाली खेती बाड़ी की पढ़ाई करावे बांग मायन बांगी पढ़ाई ग्रेडी तो बने ज्यादा बेरूर हुआ आपनों तो बठा आपा जावा आपनों कोई फसल की दिक्कत है बहुत बार देखने में आवे का आपा टाइम पर पाड भी करवा रहे हैं, आपा बीज वो भी बढ़िया लेके आ रहे हैं प्रमाणित करेडो, खाद भी देने लाग रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, फिर भी अपनी फसल लगेगी बढ़िया को नहीं हो रही, उत्पादन में फिर भी कमी आने लाग रही है, तो इसी समस्या भी बहुत जगह रहे और बहुत जगह इसी नई नई बीमारियां फसल के मायने पैदा हो जाए जगह के अपन पत्तो ही कुछ चाण चुकी कोई पत्ता में दिक्कत आएगी, जड़ में दिक्कत आएगी, कोई फल अभी में दिक्कत आएगी, भी कोई बेरू कौन रहे तो इसी समस्या बैठे जाके और शिविर के मायने जगह विषय विशेषज्ञ बैठे है बस आप चर्चा कर सका वे अपन के बारे में विस्तार से पूरी बात बतावे और बी के अलावा जगह सरकार की योजना है जगह केंद्र सरकार है राज्य सरकार है आपने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजना चला रखी
5: बिल्कुल
6: और अपना देश का प्रधानमंत्री है जगह यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जगह नरेंद्र मोदी वे भी देखो बहुत सारी योजना को आपा देखा नित नई योजना है जगह लेके आओ अपने किसान भाइयों के लिए आय दुगुनी करने के लिए बांका स्वास्थ्य संबंधित फसल संबंधित पशुओं संबंधित बहुत सारी योजना तो इतनी योजना चल रही है आपने किसान भाई ने सारी योजना को पूरा लाभ मिल रहा है एक लिए बढ़ जावा जदि जानकारी होगी भाई इतनी सारी योजना चल रही है कोई एक भी किसान ना आप पूछ लेंगे भाई क्या की

0: योजना चल रही है, कितनी योजना थे जुड़े डाओ बताओ तो भी बता कौन पाओ क्यों, क्योंकि बात आनी योजना पुगी गोनी न बात पुग गए और पुग भी जाओ तो भी सोचा चलो जुड़ांगा किया जुड़ू प्रक्रिया में फंस के रह जाओ तो बैठक जाओ आमने सामने बैठे बात करे तो थोड़ो की अगर मनोबल वो भी बढ़े किसान भाइयों को आपा बतला सका बात भी कर सका आप योजना में जुड़ भी सका के कागज चाहिए सब बड़ी दिक्कत आई रहोगे के लेके आनो है तो ये सारी चीजा को लाभ कद मिलोगे जब आप कृषि शिविरों में जावांगा ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी होगी।
1: बिल्कुल देखो मन भाई कार्यक्रम में दो बात करिए, एक तो सीखने की उम्र कोई को नहीं होगा, जवानी से लेके बुढ़ापे तक अपन कुछ न कुछ सीखने मिले। दूसरी बात ये बताई कि अपने स्वास्थ्य की बीमा देखो दोनों चीज है वह मानस जुड़ेड़ी है, कभी सीखनो की कोई उम्र को नहीं होवे और स्वास्थ्य से जुड़ेड़ी जब अपनो स्वास्थ्य एकदम ठीक रहोगो तो आप अपनी खेती बाड़ी ने नए तौर तरीका अपना की कृषि मेला में भागीदारी अपनी निभा की और कृषि विशेषज्ञ की राय के अनुसार जब आप खेती बाड़ी करा तो बिग मायने वो अपनो अनुभव है, अपनो जो खेती बाड़ी में काम कर रहे अनुभव है वो अनुभव आप बना देवगा और बाको जो अनुभव है वो आप लेगा और अपनी खेती बाड़ी के मायने नयो प्रयोग करेगा तो दो जगह से देखो एक तो आदान प्रदान हो गयो कब आप दे भी दियो और आप अनुभव है जिको ले भी लियो तो दो तरीके से जिकी आप अनुभव दिए लिए तो वो आप अनुभव अपनी खेती बाड़ी में चाहे अपने पशुपालन के मायने आप अपना की और बहुत से रोगों से अपनी फसल ने आप बचा पावा क्योंकि आजकल ज्या ज्या आप रासायनिक उर्वरकों को छिड़काव करो भैया देखो अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति है वह कमजोर होगी। अब उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अपन कौन सा तरीका अपनाना है, एक तो अपना पारंपरिक जी की सदियां की परंपरा रही है खेती बाड़ी और पशुपालन भी परंपरा के अनुसार ही आप जब खेती बाड़ी करता आ रहा तो देखो मन भाई उत्पादन है वो कम हो और जब अकाल पड़ गयो तो आपने कोई कोई बीमो को नहीं होया अगर तो बे टाइम तो वो आपा नहीं झेलनो पड़तो। ज्या ज्या सरकार अपने सागे खड़ी हुई तो अपनो सबसे पहली शुरुआत हुई थी फसल बीमा योजना, तो वह फसल बीमा आपा अपनी करवा ली। मान ले आपने कोई ओलावृष्टि होगी अतिवृष्टि होगी वर्षा को नहीं हुई बीज खराब आ गयो तो देखो वी की भरपाई है क्योंकि नुकसान हो अपनी खेती बाड़ी के मायने वी की भरपाई है बा इंश्योरेंस कंपनी है बा कुछ हद तक अपने है जिको भरपाई है बा करते हुए तो आप है जिका अगली जगह फसल लेवा तो बिग मायने आप इतना टूटा को नहीं। तो आज सरकार की कल्याणकारी जितनी भी योजना चल रही है वो सबसे सरल तरीको है गांव गांव डाणी डाणी रेडियो की पूंछ है और रेडियो अगर आप लगातार सुने लाग रहा हो तो निश्चित रूप से मोहन भाई चाहे बा रवि की फसल हो चाहे बा खरीफ की फसल हो चाहे बा जायद की फसल हो चाहे बा फल की फसल हो चाहे फूला की फसल हो चाहे सब्जियां की फसल हो वह फसलों का मायने अपने नया तरीका अपना की उत्पादन लेवा तो निश्चित रूप से अपनी आय है बा बढ़े और जिकी छह छह महीना की जिकी खेती होया करती छह से आठ महीना एक फसल ही लिया करता वे समय के सागे देखो अपना किसान भाई परिवर्तन करो और परिवर्तन का सागा आज आप साल में तीन फसल है वह लेवल आ गया तो ओ नतीजो रहे हो लगातार आप रेडियो से जुड़ेड़ा रहा कृषि मेला से जुड़ेड़ा रहा कृषि विशेषज्ञ की राय लेता रहा आप पशुपालन की आप बात करा तो आप अपने घर पशुपालक पालन को काम आप सदिया से करता रहा तो क्यों तो पशुओं की जब बीमार हो जाता तो घर ही आप देसी काढ़ा दे कि अपने पशु ना पर ठीक करने की कोशिश करा करता और ऐसे में बाकी देखो स्वास्थ्य खराब हो सी ऐसे में मृत्यु हो जाती तो किसान है वो पशुपालक है वो आर्थिक रूप से टूट जातो। जे समय परिवर्तन हो आप तुरंत पशु चिकित्सक गांव गांव ढाणी ढाणी के मायने सरकार है वह निर्धारित कर दिया कि भाई ओ एरियो ए पशु चिकित्सक के क्षेत्र में आओगे तो ए पशुओं की देखभाल के लिए पशु चिकित्सक गांव गांव ढाणी ढाणी है वह पूछा लग गया तो समय बदलो है मोहन भाई बदलते समय
0: खेती बाड़ी में भी जानकारी लिए कृषि पर्यवेक्षक लगा रखे और आपा कृषि शिविरा की बात कर रहा ई दिशा में आपा बात करा तो सरकार का देखो पूरा 12 साल हो रहा अभी के ऊपर भी आपने किसान भाइयों के लिए के कल्याणकारी योजना लेके आया जिससे कृषि ने और ज्यादा बढ़ावा मिले भी पर आपा देखो आपने किसान भाइयों से बतलावन करता ही रहो जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है तो एक महीना आपने किसान भाई ने 6,000 रुपया जगह

0: वार्षिक मिलत 2000 रुपया की तीन किस्त महीने। प्रधानमंत्री फसल बीमा की थी बात करी तो बिग महीने जो को प्रीमियम है वो नाम मात्र को देना है किसाना ने। 2% रबी की फसल के लिए, 1.5% आपने जो की खरीफ की फसल के लिए और बागवानी के लिए 5% नाम मात्र, बाकी तो देखो सरकारी देने लाग रही है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करा तो एक महीने आपने किसान भाई ने कद भी पैसा की जरूरत हो लोन के रूप में मिल जा और ब्याज नाम मात्र को रहो थोड़ो बहुत पैसा जिया जी आप एक वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए बतायो जाओ काम में ले लिया, लेने के बाद में जब भी टाइम पूरा ओटा जमा करा दियो दूसरे तीसरे दिन ओटा काट
1: ले लियो
0: बस ब्याज तो नाम मात्र को ही है। तो कितनी बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जी का मैंने पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद में पैसा मिला
1: 18 से 40 वर्ष की उम्र के
0: प्रीमियम के जमा कराना 55 रुपया से 200 रुपया तक उम्र के हिसाब से निर्धारित हुआ 18 से 40 साल के बीच का मैंने करवा सके तो जितनी अपनी उम्र होगी हिसाब से प्रीमियम निर्धारित हो जाओ होगा 200 से कमी और 55 से ज्यादा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो इस आप पानी की बचत कर सका जगह ड्रिप सिंचाई बूंद बूंद पद्धति के अनुसार और ईनाम योजना है तो सबसे बड़ी दिक्कत आई रहो आपने किसान भाई क्योंकि आप बढ़िया फसल को उत्पादन तो कर लियो पर बिना बेचने के लिए आपने स्थानीय बाजार ही रहो लोकल अभी का महीना आपने 3-4 व्यापारी गिनती का है बैंक नहीं जावा बे जगह भाव बता दिया अभी भाव में बेचना पड़े तो आप इतनी मेहनत करी उत्पादन लियो बढ़िया अनाज लेके आए अभी के बाद भी आपने जो वो मुनाफो जी तो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पावे तो इसके लिए देखो ईनाम जगी योजना है जिकी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है तो एक पोर्टल बना दियो सरकार इक ऊपर अपना किसान भाई है जगह रजिस्ट्रेशन करा दे और इक ऊपर ही व्यापारी है वहां को भी रजिस्ट्रेशन रहे तो किसान भाई आपकी फसल अभी ले जाओ और फसल न ले जाके और बैठे जो पोर्टल है बिग ऊपर एंट्री करवाई एंट्री करा के आपकी जो भी कीमत है वह कीमत लगा दियो और बिग ऊपर बाद में बोली लग गए व्यापारी है जगह बोली लग गए तो आपना जगह किसान भाई है जगह आपकी उपज है भी को एकदम बन उचित जगह मूल्य वो मूल्य भी को ऊपर मिले
1: बिल्कुल। देखो मोहन भाई थे बहुत अच्छी बात बताई हो कि भी किसाना ने एक बड़ो प्लेटफॉर्म मिल गयो कभी आपको अनाज है वो आप कौन सी अनाज मंडी में आपा ने बेचनो है भी अनाज मंडी में मायने आपा पूरे हिंदुस्तान का भाव है भाई घर बैठे ही है वो आप ले लेवा घर बैठे वो भाव आपने मिल जावे तो मोहन भाई अपन यू लागे कि बाजरो ए भाव है गेहूं ए भाव है और ई भाव में आप अठे है जी का बेच का बिचौलिए से अपनी हमेशा ही है जी को गेल छुटकी हमेशा अपनो किसान है वो बिचौलिए के बीच त्रस्त रहे तो सरकार के मन में आई कि क्यों ने अपने किसाना ने एक बड़ो प्लेटफॉर्म है वो अनाज बेचने को मिल जावे तो वो आपकी मर्जी के अनुसार चोखा भाव मिल रहा है बेटा वो आपको अनाज है वो बेच देवे तो क्या गए सरकार की कल्याणकारी योजना मोहन भाई वह हमेशा ही अपने किसान के हित की रहे और ये योजना को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपनी उपज है बापा अपनी मर्जी के अनुसार है वह बेचा एक अलावा भी बहुत सारी योजना चल रही है। अब देखो मैं थारो इशारो भी समझ रहा हूँ कभी गीत संगीत भी अपने कार्यक्रम में हो जाए शुरुआत में आप कहो भी हो कि बातचीत के साथ अपना गीत संगीत भी होगा तो सुनाओ अपने ही ताड़वाना मीठी सी लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाइयों आ संदेश पाछा आपरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। मन भाई इस संदेश उपेला अपने ताळवाना एक मीठी सी लोक रचना सुनाई थी सीमा मिश्रा राकेश कालाई गाइडी। अब अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बात करा कभी आपा ठहरिया अपने गांव का और गांव की अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन और खेती पर निर्भर है। अब खेतीबाड़ी बिना पशु को नहीं, पशु बिना खेतीबाड़ी को नहीं, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है और पूरो जद हो जब दोनों स्वस्थ रहे, अपनो पशुधन भी स्वस्थ रहे और अपनी खेती बाड़ी भी स्वस्थ रहे। तो आप खेती बाड़ी की तो बदलाव कर ली, अब अपने पशुओं की अपन ख्यात रखनी है कभी अपने देश की अर्थव्यवस्था को मायने पशुपालन को बहुत बड़ो योगदान है। दूध उत्पादन की आप बात कर लियो, चाहे ऊन उत्पादन की आप बात कर लियो। अब अपन अच्छी नस्ल का पशु है वह कहीं तैयार करना है,

0: अच्छी नस्ल का पशु तैयार करने के लिए अपन एक तो पशु नस्ल सुधार को एक कार्यक्रम है अपने भारतवर्ष में चल रहा है, कभी अच्छी नस्ल को पशु आप कहीं तैयार कराओ तो सबसे बड़ो अंको तो एक वो है कि भाई कृत्रिम गर्भाधान है, कभी आपने अंचल के मायने देसी गाया है और देसी गाया की जब आप दूध की आप बात करा तो मोहन भाई 10 से 12 किलो को दूध उत्पादन है वो आप गाय से आप ले वहां। अब बिन आप अच्छी नस्ल की गाय क्या बनावा तो मैं ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन किया लेवा तो एक कृत्रिम गर्भाधान अपने सरकार की योजना चल रही है तो एक महीने कृत्रिम गर्भाधान करवा की और बिस आणर जी की नस्ल है बा अगर बछड़ी आ गई तो बहुत अच्छा उत्पादन है वो दूध को देवे। दूसरो कभी आप पशु रखा पशु स्वास्थ्य के रूप से वो एकदम पुष्ट रहे तरोताजा रहे तो अपनो है जिको पशुपालन में फायदो है। तीसरी बात है कि भाई अपने अंचल का मायने जिको पशुओं की बांझपन की समस्या है अब मोटी समस्या अपने पशुपालक के लिए आवे तो बांझपन निवारण के लिए भी सरकार है बा योजना चला रखी है कि भाई इन्हें दूर आप क्या करा तो जब बांझपन की बात चल गई तो अपने पशुओं का मायने जिको बांझपन है वो आज अपने विज्ञान इतनी तरक्की कर ली है मोहन भाई कभी भी बांझपन ने धीरे धीरे अपना पशु चिकित्सक है वे वैज्ञानिक तौर तरीका अपना की आ समस्या के जो समाधान है वो अपना किसान भाई है वे ढूंढ अपना पशु चिकित्सक है वे ढूंढ लिया तो हमें किसाना ने मोटो फायदो है वो मिले तो पशु अच्छी नस्ल का पशु आप खरीदा विषय अपने उत्पादन है वो बड़की मिले इसलिए पशुओं की तरफ अपने पूरा ख्यात है वो करना है।
1: बिल्कुल देखो जब पशु की नस्ल की बात कर रहे हो जी आप खेती बाड़ी के मायने उन्नत किस्म का बीज जगा ले कह रहे काम लिया जी पशुओं का मायने भी जगह उत्तम नस्ल की जगह पशु हो वे ही आप लेके आवा या आगे आना रे टाइम वे ही नस्ल है जगह आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देवा भी मायने आप बात करा अगर उन्नत किस्म का मायने तो जी गाय है भी मायने साहीवाल है राठी है भैंस का मायने मुर्रा भैंस है तो ये ज्यादा दूध देवे। अब बढ़िया नस्ल का जब आप पशु लेके आ रहे हैं तो बाको की स्वास्थ्य वो भी बढ़िया रह रहे बीमारियों से लड़ने की बाम ताकत रहे क्योंकि बढ़िया नस्ल को लेके आ रहे हैं आप है ना तो बामे रोग प्रतिरोधक क्षमता है भी ज्यादा रहे और आपनो जो अठगो वातावरण भी अनुसार अगर देखा नस्ल जगह थे देसी की बात करी तो बी नस्ल का पाड़ा तो और ही ज्यादा बढ़िया रहे क्योंकि बे आपनो जो
0: वातावरण है
1: हाँ बी के अनुसार वो तापमान बे सहन कर पावे और बी के अनुसार रह पावे अगर आप इसी कोई नस्ल लेके आ गया जगी ये गर्मी का महीने या इस सर्दी ने झेल ही नहीं पावे तो वो पशु तो देखो ये बीमारियां से ग्रस्त रहो है ना बिन तो ये दिक्कत रहे तो आपा ने जब भी आप पशु खरीद रहे हैं या देख रहे हैं तो एक तो आपने अपना वातावरण भी को जरूर ध्यान
0: रखना
1: अनुकूल जो को पशु आपने रह पावे भी हिसाब को ही पशु आपने लाना चाहिए आ चीजों को आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल और देखो आप उन्नत नस्ल को जिको सांड हो बीसे ही आप है जिको अपने पशुआन है जिको गर्भाधान है बेस करावा जैसे क्या हुए का अपन उन्नत नस्ल को सांड है बैंको सीमन से है जिको अपने जिको उत्पादन है मिल रहे है वो आपने बढ़िया मिले बातचीत तो मन भाई आप और भी करना चाह रहा था पर बखत है वो आपने आगे जाने की इजाजत है वो नहीं दे रहे तो आज को कार्यक्रम किसान वाणी बस अठाई तक अयूब खान गोड़
1: और मोहन भाई ने
0: सीख दियो करा आपसे
1: राम राम। एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम।

श्रोता भी सुन रहे थे सुजान सिंह खिंची और साथियों को। हम आकाशवाणी चूरू से बोल रहे हैं। श्रोता इस समय सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम।

सीमा मिश्रा की आवाज़ में श्रोताओं, अभी आपने ये राजस्थानी लोक रचना सुनी। इस लोक रचना के साथ कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोता कार्यक्रम के आगाज में सुन रहे थे राजा फिल्म का गीत। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण। सबसे बड़ा खिलाड़ी इस फिल्म में श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और साथियों की।

श्रोता, अभी कृष्णा फिल्म में ये गीत सुन रहे थे। आवाजें थी अलका याग्निक और साथियों की। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम

0: गुलदस्ता आकाशवाणी के चूरू केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोता सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम था राजू बन गया जेंटलमैन। गीतकार मदन पाल, संगीतकार जतिन ललित।

श्रोता अभी सुन रहे थे मोहरा फिल्म का गीत। आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। गीत लिखा था इंदिवर्णी, संगीत विज्जू साह का। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र चूरू से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे यकीन फिल्म का गीत, आवाज़ें उदित नारायण अलका याग्निक की, गीतकार समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: अंतराल के बाद श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

बाबुल सुप्रियो अलका याग्निक को श्रोता सुन रहे हैं अंदाज फिल्म में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 का प्रसारण।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात

0: करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें।

0: प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia

श्रोता राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे पप्पू मस्ताना और साथियों को। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम संस्कृति भारती।

0: आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम

0: गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की, और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने

0: की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आईं और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है, ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट

0: है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
1: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
1: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
1: शौर्य आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
1: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटेलिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक, पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
1: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
2: जी? हैं,
1: रादर देन योर ओन कंपोजिशंस।
2: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव्ड इट।
1: जैसे भी आपने एक एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayan itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग, कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है, और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महा आचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू रामा एंड लक्ष्मणा फ्रॉम दैट राक्षसी बावन द हैंड गोज इनटू अ ब्यूटीफुल पल्लवा।

0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
2: सैक्सोफोन वादन यूशिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंताला पुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adita.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग हंसध्वनि। Continuing his recital, यू शिव प्रसाद now presents another composition based on राग नवरस कानड़ा। Composition निन्नु वीणा रामा, composed by त्यागराजा, is set to रूपकम तालम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
2: साथ में रत्नापा
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल

आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना

0: National of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: चूरू केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।